फतेह श्री भगवती दे सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाह दसवें प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याइया जिस डिटाय सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत

साहदान प्रसादान दान सिरदान नाम दान श्री अमृत सार साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगा जुग अटल धर्म का

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान सा

अब रख दास पाठ की लाज, जैसे राखी लाज भक्त प्रहलाद की, हर नाख सफारी कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बह साज। सो दामा अपदा ते राखिया, गन का पढ़त पूरे तेह काज। श्री सतगुर सुप्रसन्न कलयुग होए, रखहु दास पाठ की लाज। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र,

नूर अर सहो कुरसो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मन जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरसादशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावी सा सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाह दशाह जिस पास बैठिया

मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केते छुटे नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

जैसे बन बिखे मल्ले आगर सोधा कपूर सोध के सुभासी सुभास बहसा वही तैसे गुरबाणी बिखे सकल पदार्थ है तैसे।

गुरु गरीब निवाज, गुरु गरीब निवाज, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गोने अवगन न विचारो कोई। माटी का क्या तू पै स्वामी,

लिखे यंत्र के ते, लिखे यंत्र के ते पढ़े मंत्र कोटं बिना शरण ताके।

माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दा खेला सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचा धर्म हदूर करमी।

पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दया खिलै सगल जगत चंगियाई बुरी।

बार पाव हिंगुला हिमाल ध्यावे गौर कर दज गुण गावे तेरे जोगी जोग सज कौन साधना किते पद आरब के आरबी आराध तेरे हर के फिरंगी माने कंदारी कुरेसी जाने हर के फिरंगी माने कंदारी।

अंग के बंगाली फिर हंग के बिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में रोह के रोहन मांग देश के मंगेले भी बंग सी बंदेले पाप पुंज को मलत।

0: तो देह गए बिनवता। श्लोक पवन गुरु पान पिता माता तरत महत दिवस रात दोयदाई दाया खेले सगल जगत चंगे आइया बुरे आइया वाचै धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़क दूर जनी नाम ते आया गए मसक्कत खार नानक ते मुख उजले
1: छुट्टी नाल
0: नाम ते आया गए मसक्कत नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कव्यो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर रक्षा निज कर दै करिया सब बैरिन को आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दे मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझु करियो रक्षा। राख लियो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाई ब्रह्म अवतरा काल पाई शिवजु अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो। आदंती के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो। कट कट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै कट कट के पट पट की जानै। जबद करख करा करतारा प्रजा धरत तब दे अपारा। जब करख करत हो कब हो तुम मैं मृत दे तर सब हो। जेते बदल सृष्ट सब तार आप अपनी बूझो चार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील नाद सांब। ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा।
ਖੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ ਉਤਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਯਾਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਜੰਭਵ ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠੋ ਤੁਤ ਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਤੁਜਤਾ ਵਿਸਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਇ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਮਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਤ ਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ

दारिद दुष्ट दोख तेरा, खड़ग के तमें शरण तिहारी, आप हाथ दलि हो उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग के तमें शरण तिहारी, आप हाथ दलि हो उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ती को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहार द्वार, बाही गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार, सगल द्वार को छाड़ के गहो

कुतः सुख होवा, तितु कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पे सर से, पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सधारो। जेको खावै जेको पुंचै, तिसका हुए उधारो। एह वस्तु तजी नह जाई, नित नित रख और तारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही, मैं नौ जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया विहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिला ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पया विहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा।

अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए। दसां पात

चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल

जब लो नहीं पाग लीलारि उदय, तब लो प्रमति फिरते बहुत आयो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथा शत्र तर। जा की शोत जगत को लागे, ता पर तू ही टरे। नीच यूच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। नाम देव कबीर तिलोचन, सदना सैन तर। कह रविदास सुनो रे संत, हो हर जियो ते सब सर। नाम देव कबीर तिलोचन, सदना सैन तर। कह रविदास सुनो रे संत, हो हर जियो ते सब सर। सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सो ही है, सबना दावे सा। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सो ही है,

जिह करनी हो वह शर्मिंदा यह कमानी रीत संत की निंदा साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत जिह करनी हो वह शर्मिंदा यह कमानी रीत संत की निंदा साकत की पूजा

हर चंदौरी मन हर पातरी यह तुहारो बीता रहा चंदन लेप होत देह का सुख गर्दब भस्म संगीत अमृत संग नाही रुचियावत बिखठ गौरी प्रीत उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित्र पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बादर जीत जन्म जन्म के किलविख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते निकस्यो नानक एक परीत जन्म जन्म के किल विख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते

मलार महला पंजवा। खीर अदार बारिक जब होता, बिन खीरा रहन न जाई सार संभाल माता मुख नीरा। तब ओहो त्रिपत।

हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राख सरनाई। सुख टल गुर सेवी अहनस सहज, दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख। ओ सिफत खसम दीन ओर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सचे पात सहा मल जन्म जन्म दी। सजन सचा पात साहु सिर साहांद, जिस पास बैठिया सोही सबनांदा। सजन सचा पात साहु सिर साहांद, जिस पास बैठिया सोही सबनांदा विसाहो। सतनाम

बिनस जाए परमाई, आनंद रूप रवियो सब मद, जात कात पेखो जाई, तुम दयाल कृपाल कृपा निद, पातत पावन गोसाई।

आखो शब्द प्यारे ओ सिखो शब्द प्यारे ओ जन्म मरण की टेक मुखी उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक गुरु गुरु गुरु कर मन मोर

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा खैला करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच है न सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
1: वड़ी वड़ाई जन वड़ा नाओ वड़ी वड़ाई जन सच न्याओ वड़ी वड़ाई जन निचल थाओ वड़ी वड़ाई जन अला वड़ी वड़ाई बुझे सब पाओ वड़ी वड़ाई जन पुछ न दात वड़ी वड़ाई जन पे आप नान कन कथनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा
0: एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समायल एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पहाने कडले एक ना माया विच निवास ए

0: पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडैव डाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध अग्गे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहे विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालियां कासी कुदरत सर्वे आकार कुदरत

नरक न जाइए। जियो पिंड सब तिस्ता देखा जे आख गवाइए। जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनः नीच सदाइए। जे जरवाना पर हर जरवेश करें दी आइए। को रहना पर ये पाइए, को रहना।

होमे कर कर जंतु पाया, होमे बुझे ता दर सुझे, ज्ञान में होना कथ कथ लूजे, नानक हुक्मी लिखिए ले जे हवे खे।

0: दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडा अंडज जेरज उत्पजा खानी सेत जा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करता करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिनो पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ सतसी बाण भग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख ने किया चंगियाँ लखपना प्रवान लख तप पर तीर्था जोग बेबाम लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण।

गुर बिन सुता पग पे ताना अपना किया कमाना। हल मल खाई सिर छाई पाई मूर खंदे पत गवाई बिन नामे किस थाए न पाई। रहे वे बाड़ी मड़ी मसाणी अंत न जाने फिर पछताने। सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन मसाए नानक नदर करे सो पाए। संदेश तेने केवल हों में शब्द जलाए पौड़ी भक्त रे मन।

दुर्कर्म जिना तुद पाया था तिने खसम ते आया। उन्ना जनता के बस किच नहीं तुद वेखी जग तू पाया। एक नानू तू मेल लहे कापो तुद खवाया। गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया। सहजे ही सच समाया, सहजे ही सच समाया।

0: कुदरत वसिया तिरंत ना जाई लखे रहाओ। जात में जो जोत में जाता कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब सत्सवाल जिनकी ती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता, जो किश करना सो कर रहे महला दूजा।
1: जो सबदं ज्ञान सबदं वे सबदं ब्राह्मण खत्री सबदं सूर सबदं सूद्र सबं प्राकृत है। सर्व सबदं एक सबदं जे को जाने पे ओ नानक ता का दास है। सोई निरंजन देव महला दूजा।
0: एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास दिवस जे को जान भयो नानक ता का दास है। सोई निरंजन देव महला पहला।
1: कुंभे बदा जल रहे कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ नो खो ज्ञान का बदा मन रहे गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़े।

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथा अत बड़ सो भारत सदा सब विद।

कब हुंक को पावे आत्म परगाथ का। वेद बाणी सहत बिरंत जास गावे जाको शिव।

सिद साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिर तो उदास का सो तिन सत गुर सुख पाए।

मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ हुन कीरतवंत सदा सुख संपत हृदय और सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास केहो एहो तथ ताहे कहाँ परवाह कहूँ।

तेन पवन परपुरो सोई, अपन सरस कियो न जगत कोई। अपने आप ही उपायो, सुर नर सुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुरे, नर गंध नर खोजंत फिरे। अविनाशी अचल अजूने, संभो पुरखोत्तम अपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन ते आयो। श्री गुरु रामदास, जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन, तन मन तन गोबिंदियो। अंगद अनंत मूरत निज तारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुरु अमरदास करतार कियो वस, वाहो वाहो करते आयो। श्री गुरु रामदास, जय ओ जय जग में ते हर परम पद

शत्रु प्रहलाद सुदामा भगत हर के जोगण अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पणम तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगत

जेहि सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटाखिन। जेहि सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जेहि सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै। जेहि सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावै। सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो। जेहि सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरो नरो।

जीव अंगद अंग संग नानक गोरे तेव गोरे अमरदास के गोरे रामदास नानक नाम निरंजन जाने हो किन्नी भगत प्रेम लेवलाई तां ते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द

0: सगल सृष्टि लगे बेतरो।
1: सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बला शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रवन दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद दे सहस मुख फनिंद जियो। जर्म कर्म मच्छ काछ हो बराहा जमुना कै कू।

अष्टपदिया महला चौथा। कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, तिस पह आप विचाई, दर्शन हर देखण कैताई, कृपा करहे ता सतगुर मिलह, हर हर नाम त्याई, प्रीतम प्यारा, हो तिस पह आप विचाई, दर्शन हर दिखन कैताई, कृपा करहे ता सतगुर मिलह, हर हर नाम त्याई, रहाउ जे सुख देहे तन तुझे अराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख देहे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, अखा फेरी पानी ढोवा, जो देवह सो खाई, नानक गरीब टह पया द्वारा, हर मेल लहो वड्याई, अखी काड धरी चरना तल, सब धरती फिर मत पाई, जे पास बहल है ता तुझे अराधी, जे मार कढ़े पी त्याई, जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदा ता छोड़ न जाई, जे तुद वाल रहे ता कोई केहो आखा, तुद विसरे मर जाई, वार वार जाई गुरु ऊपर, पै पैरी संत मनाई, नानक विचारा भया दीवाना, हर तौ दर्शन कैताई, चखड़ झागी मीहो वरसै, भी गुर देखण जाई, समुंद सागर होवै बहु खारा, गुरसिख लंग गुर पह जाई, ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई, ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै, त्यों सिख गुर मिल बिगसाई,
सेवक का होए सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पह, गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे, गुर विच दे तुझे त्याई। जो तुझ सेवै सो तू है होवह, तुझ सेवक पैज रखाई। भंडार भरे भगति हर तेरे, जिस भावै तिस देवाई। जिस तों देह सोई जन पाए, होर निफल सब चतुराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाई। एक दान मंगै नानक विचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर झिड़के ता मीठा लागै, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोलै सो थाए पाए, मनमुख किस थाए न पाई। पाला कक्कर बर्फ वरसै, गुरसिख गुर देखण जाई। सब दिन सरैण देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेको पाव करी गुर कारण, गुर भावै सो थाए पाई। रैण दिनस गुर चरण आराधी, दया करहो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अगाई। नानक का प्रभ पूर रहयो है, जत कत तत गोसाई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अगाई। नानक का प्रभ पूर रहयो है, जत कत तत

बोलो जीवा हे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फातह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, राम दास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे कर नौ निधि आवै ताए, सब थाई हुए सहाय, दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा

आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फत हे विरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बलो जी वाहे, बलो जी। सिखानू सिखी दान, केस दान रहत दान, बवेक दान विसाह दान प्रुसा दान। दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत दा रखाप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब आते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार आते